रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

Thank you.

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आ

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

पैर थकेंगे, आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्द।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज

को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर एवरी वेंसडे एंड सैटरडे. रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: Chinar Beats with RJ Deepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आए थी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, चल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।
2: रेडियो चुनार।

Assalamualaikum, adab and a warm welcome to all of you. और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन और लो हाजिर है जागसूस लेकर शो. What's up?

0: रेडिएशन ऑन 90.4 एफएम।
1: दोस्तों हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल 90.4 एफएम। डू फॉलो शेयर सब्सक्राइब रेडियो चैनल 90.4 एफएम एट फेसबुक इंस्टाग्राम एक्स एंड यूट्यूब। फॉलो करने से अलावा आपने कमेंट्स में प्यार जरूर देना है, क्योंकि आपका प्यार बनाता है रेडियो चैनल को सही मेरे यार। डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में। और दिल की धड़कन रेडियो चनार मजीद मालूमात के लिए लॉग ऑन टू www.radiochinar.com। मैं हूं जॉक्स्यूस मुस्तार शो, वो सबसे धड़काते रहो।

0: Ninja Zeus. Kom nou ja.
1: Radio Chennai. Radio Radio Chennai. Weather update. Weather update.
2: और इस फ्रीक्वेंसी हर दल के दर्कन रेडियो चना 90.4 एफएम और ब्रदर आज का वेदर
1: रेडियो चना रेडियो रेडियो चना वेदर अपडेट
2: जी हाँ, आज के वेदर का किस्सा है खास, सीधी बात नो बकवास। रेडियो चना पर वेदर अपडेट चाक्सीज के साथ। आज दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 30 डिग्रीज, इन दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा। इट इज सनी फॉर टुडे। आज दिन का जो तापमान है उफान पर रहेगा। इट इज ओवरऑल फुल सन फॉर टुडे, और कोई भी बादल सूरज को डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं करेगा। यू इंडेक्स वेरी वीक पर ह्यूमिडिटी 65%, विंड स्पीड अभी के लिए 2 किलोमीटर, विजिबिलिटी 6 किलोमीटर। आज का सनराइज हुआ 6:29 पर, आज का सनसेट होगा 6:11 पर। जी हाँ, सबके हाथ आएगा रेडियो चनार, क्योंकि आप ही हैं जो हर दिल की धड़कन को धड़काते हैं। शो का हिस्सा बनने के लिए 8899-04-904 इज द नंबर। नाउ 0104 आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज। मैं हूँ जॉक्सी, उससे धड़काते रहो।

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

0: कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे
2: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा। वायरल ऑन व्हाट्सएप एक ऐसा सेगमेंट जहां पर जो होता है वायरल हम पहुंचाते हैं आप तक। जी हाँ, एक खातून, एक लड़की जो गिरी 8वें फ्लोर से नीचे गिरकर हुई बेहोश, उसके बाद जब होश में आई 20 मिनट फोन को स्क्रॉल किया और उठकर चली गई। कंबोडिया का किस्सा इंटरनेट पर वायरल रहा क्योंकि ये लड़की जो है 8वें फ्लोर से गिरी जिंक रूफटॉप पर, उसके बाद 20 मिनट तक फोन चलाया और उसके बाद उठ खड़ी हुई एंड पीपल वर लाइक ये का है बे, अब वायरल था तो व्हाट्सएप पर आ चुका है। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन, मैं हूं जॉक्स, मेरी जान धड़काते रहो।

0: रेडियो चिनार 90.4 एफएम हर दिल की धड़कन।
1: हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 एफएम शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में आज का कोट ऑफ द डे। आज का कोट कहता है, आई सॉ फ्यूचर विद यू, नाउ माय टुमारोज आर एम्प्टी। हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल, स्टे हुक्ड।

0: bunch of zoos.
1: Kom nou ja.
2: Zeus.
3: What is frequency? Had the Gitterkan Radio channel 90.4 FM. Up enjoy kar rahe Mazdar Show. What's up? What's up, show ke safar mein main hoon aapka humsafar Jock Zeus aur hamare saath show ka hissa bani hai Saima. लिखती है साइमा सर, यूं तो मैं आई फील गुड में पार्टिसिपेट करती हूं, लेकिन आज टॉपिक का वेट कर रही हूं क्योंकि टॉपिक सुनने के बाद बहुत कुछ जानने को मिलता है शो से और रेडियो चैनल से। डेफिनेटली साइमा टॉपिक आप तक पहुंचाया जाएगा। और यहां पर बता दूं आपको कि आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं 8899-0049-0409-04 इज द नंबर। आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज। जी हाँ, आप DM भी कर सकते हैं जॉक ज्यूस के नाम से, मिलूंगा इंस्टाग्राम पर JOCKEUS। और आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस की। पेयर प्रेशर तो होता है जब भी आप फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस की बात करें, तो अक्सर हम इस चीज को मानकर चलते हैं कि स्टेज ही है आर्ट और पब्लिक स्पीकिंग के लिए जब हम स्टेज फेयर की बात करते हैं, फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस की बात करें। लेकिन डिफरेंट सेक्शंस में अगर हम देखें, बी इट ऑटोमोटिव, बी इट रॉकेटरी, हर एक जगह पर एक फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस होती है। और इस स्टेज फेयर और पेयर प्रेशर से आप कैसे बचेंगे, आज हम करेंगे बात फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस की। अलग अलग क्षेत्र की बात होगी किस तरह से हम इस स्टेज फेयर को टैकल कर पाएंगे। लेकिन बातों के साथ साथ म्यूजिक भी जरूरी है, तो म्यूजिकल डोज लाइक एवरी रोज आज भी आपके लिए। गेट इन टू यू वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स बाय एमी वेबंटा, इट्स दुबई कंपनी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी पर जॉक ज्यूस के साथ मजेदार शो, व्हाट्सएप सिटी हिट धड़काते रहो।
4: बंटाई कर गाने में स्लैंग दे रहा तो।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्द।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

दोस्तों, रेडियो चैनल की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप शो में अगली पेशकश टेक टॉक्स एंड बॉलीवुड न्यूज। हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल 90.4 FM पर सुन रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सएप। मैं हूँ जॉक्सू, सिटी हक्ट, धड़काते रहो।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

0: Dr. Zeus.
1: Kom nou ja.
2: Tech Talks with RJ. Radio Channel की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर मैं हूँ जॉक्स ज्यूस. एंजॉय कर रहे हैं आप मजेदार शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो का सेगमेंट टेक टॉक्स. टेक टॉक्स में आइए बात करते हैं आईफोन 13 की. जी हाँ, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो आईफोन 13 यूज कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि खरीद ले, तो आपको बता दूं आईफोन 13 एप्पल ने कर दिया है डिसकंटिन्यू. अब इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया से एप्पल का आईफोन 13 गायब हो जाएगा. ही न कंदी न कहाँ कुछ ही ना आईफोन 13. उसको जस्ट जितने भी एप्पल के पास आईफोन 13 के मॉडल्स थे या डिवाइसेस थी, वो पूरी तरह से सेल हो चुकी हैं एंड आफ्टर मार्केट में तो आपको मिलेंगी ही. नाउ आज का रियल स्टैंडिंग है कि आईफोन 13 चलाने वाले आदिवासी हैं, अरे पिछड़े हुए लोग हैं, बट इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट डिवाइस फ्रॉम एप्पल. उसका आइकॉनिक डिजाइन और साथ ही साथ रिलायबल परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं आईफोन 13 को चुलकम की तरह खास बना हुआ है. रेडियो चुनार 90.4 FM, चुलकम चबाइए और हमें बताइए क्या है आपके दिल में वाणी जो आप चाहते हैं पूरी दुनिया को सुनानी. जॉक्स ज्यूस के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं मस्तार शो व सबसे डेहक दरगाह दे रहा.

Chinar Beats with Dhar Chediba, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: to Zeus. Kom nå, ja.
1: Bollywood News.
2: दोस्तों रेडियो चैनल 90.4 एफएम हर दिल के धड़कन आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सअप और व्हाट्सअप शो में बॉलीवुड न्यूज़ जी हाँ, बॉलीवुड में आइए बात करते हैं नुसरत ब्रोचा की, जो गई थी बाली छुट्टी मनाने। वहां पर हुआ कुछ शॉकिंग। जी हाँ, उनका पांव फिसलने की वजह से वो गिर गई और उनकी स्पाइन हो गई फ्रैक्चर। बताया जाता है डॉक्टर्स का कहना है कि वो अब बहुत देर तक या ताउम्र सपोर्ट के बिना चल नहीं पाएगी या चल नहीं पाएगी, चलने में उन्हें दिक्कत हो सकती है। देखिए, नेम फेम सब है, पैसा है, लेकिन कुदरत की तरफ से एक अनहोनी और इंसान की जिंदगी पलट सकती है। दैट्स व्हाट नेचर ऑलवेज ट्रीट्स अस, दैट्स व्हाट वी हैव बीन आस्क्ड टू फोकस ऑन। Be grounded, be humble, be down to earth. We wish Nusrat a speedy recovery. और जो भी hospitals में बीमार पड़े हैं उनके लिए भी दुआ करें और सबके लिए दुआ जरूर करें। रेडियो चनौर की हॉट फ्रीक्वेंसी पर मैं हूँ जॉग ज़ूस। आप बने रहें, सुनते रहें और दिल की धड़कन को धड़काते रहें।

0: Jesus. Kom aan, ja.
1: दोस्तों वक्त आ चला है कि आज के लिए आपसे इजाजत लीजिए। जी हाँ, जाने का वक्त और वादा कल आने का वक्त पे। So I'm leaving you here with this famous track from 90s, Humse Mukabla, and it's Mukala Mukabla Lela. And I'll see you tomorrow till we meet again.

0: हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज जे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

आ गई मैं लेके शो हंगामा। देखिए शो शुरू हो चुका है हंगामा और हंगामा कैसे 12 बजे, क्योंकि आज मुझे मौका मिला कि जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए हम और ड्रामा एंटरटेनमेंट इन्फॉर्मेशन और क्या चल रहा है दुनिया में, क्या बजेंगे और लाइफ का ऐसा फिलोसॉफिकल टच जो सिर्फ और सिर्फ यही मिलता है।

तो शो शुरू हो चुका है और काफी सारी बातें करनी है। बहुत टाइम बाद मौका मिल रहा है आप सबसे बात करने का। और हमारी एक परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन है कि आते आते ही प्ले होता है कुछ खास कुछ क्रेजी।

एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक शो शुरू हो चुका है. बहुत सारी बातें हैं, क्या ट्रेंडिंग है, रेलवे अपडेट्स, जो भी अपडेट्स हैं, वन मिनट फैक्ट, टॉपिक, गेम ऑन, बहुत कुछ है यहाँ. एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स, क्योंकि देखिए बैक टू बैक ट्रैक्स के बाद रेडियो सुना देता है सबसे ज्यादा. एंजॉय कीजिए ट्रैक और इसके बाद भी बहुत सारे ट्रैक्स. मैं बस यूं गई और यूं वापस आई.

0: हाय मैं हूँ आरजे सियू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। जी हाँ, हंगामा है बट इन्फॉर्मेशन भी ज़रूरी है, और इन्फॉर्मेशन आज की ये है कि आते आते ही हम प्ले करते हैं और प्ले करते हैं बहुत सारे ट्रैक्स, बैक टू बैक ट्रैक्स। तो पूरा रेडियो चुनार इसी के लिए माना जाता है कि एड फ्री म्यूज़िक का वादा रेडियो चुनार देता है सबसे ज़्यादा। बट इसके अलावा ये भी बातें होती है कि ट्रेंडिंग क्या है, आज की जो सोशल मीडिया की सब्जी मंडी है वहाँ क्या चल रहा है, लोग क्या सुनना देखना, रिपोस्ट, स्टोरीज, लिप सिंकिंग, डांस रील्स और बहुत कुछ है वहाँ। और हमेशा देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे कभी भी कुछ भी ट्रेंड कर सकता है। लोग कुछ भी अचानक से 10 साल 20 साल पुराना कोई ट्रैक हो या कोई मीम हो या कोई डायलॉग हो अचानक से ट्रेंड कर जाता है, और वो इसलिए है क्योंकि आज लोग कोई एक जो कैची चीज़ है वो पकड़ कर उस पर बहुत सारी रील्स बनाते हैं और बस अगले दिन वो चीज़ ट्रेंड कर जाती है। और आज एक पुराना गाना है जो काफ़ी ज़्यादा अभी बहुत ट्रेंड कर रहा है, लोग सुन रहे हैं, इस पे डांस रील्स बन रही हैं और उसके अलावा ज़्यादा लोग ये गा रहे हैं अपनी अपनी आवाज़ में, अपने अपने अंदाज से ये बहुत खूबसूरत गाना गा रहे हैं। कुछ भी बोलो, एक गाना तो बहुत खूबसूरत है। और अभी अपने अपने जो पार्टनर्स हैं, लवर्स हैं, या अपने लिए अपने एडिट्स बना रहे हैं, एकदम क्यूट क्यूट सी रील सामने आ रही हैं, क्या बताएं। और देखिए, सबसे बड़ी

चीज इसमें जो अभी काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, दैट इज छलरे बाल, दैट इज लाइक घुंघराले बाल हैं, और अपने महबूब को एक हिसाब से ना वो एक्सप्लेन कर रहे हैं. भाई बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट गाना है ये.

एंजॉय कीजिए ये ट्रैक, मैं बस यूं कहीं और यूं वापस आई. तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 एफएम पे बहुत सारे बैक टू बैक ट्रैक्स, और इसके बाद हम बात करेंगे आज की अपडेट के बारे में. मैं हूं आसरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन.

मैं हूँ आरजे असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM। हाय, मैं हूँ आरजे असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats ve Darje Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हेलो जी हेलो, अभी शुरू हो चुका है शो म्यूजिक ऑन डिमांड, जो कि आज 1:30 से लेकर 2:30 बजे तक चलेगा, जहां पे आप अपनी म्यूजिकल रिक्वेस्ट हम तक पहुंचा सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, डेडिकेट करना चाहते हैं और कौन सा गाना आप अपने लाउड वंस के लिए प्ले करना चाहते हैं। तो जल्दी से फोन उठाइए 8899-0494 पर, कॉल मैसेज टेक्स्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी म्यूजिकल रिक्वेस्ट इस म्यूजिकल जर्नी में हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल के लिए एंजॉय करेंगे ये ट्रैक, क्योंकि हम तो अजनबी नहीं है, बट कभी ना कभी आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा अजनबी आता है जो एक्चुअली आपकी लाइफ को और बेहतर बनाता है। Enjoy कीजिए back to back tracks only on Radio Sonar 90.4 FM. मैं बस यूं कही और यूं वापस आई, सच्ची।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM।

0: हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम।
1: I can't wait, because she has absolutely no idea. Let's go.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

अपने दिल की बात मेरे साथ, दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

Chinar Beats with Harshi Deepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हाय, मैं हूँ आरजे रीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 FM।
1: मैंने एक मोटरसाइकिल दिला दो ना।
2: कुछ और मंगला ना, मोटरसाइकिल
3: दिला दीजिए ना।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, चल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Jeremy.
1: Jeremy.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: दिल को
4: करार आ जाए
3: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
3: दबी यादें महक जाए
4: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
4: सुनिए सुहानी शाम
3: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
4: 90.4 FM।

0: दिल को करार आ जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
0: 90.4 FM।

0: दिल को करार आ जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
0: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खा

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को करार आ जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
0: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: तुझे याद है ना आज पापा तुझसे बात करने वाले हैं?
2: उन्हीं से मिलने की तैयारी कर रहा हूँ।
1: सलून में?
2: लड़कों की खूबसूरती सलूनों में नहीं, बैंकों में निखरती है। अगर आज लोन पास हो गया ना, घर और घरवाली एक साथ फिक्स हो जाएंगे।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4।

0: दिल को करार आ जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो सिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। रेडियो चिनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

दिन, चैन, आराम, रातें, सुबह, दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, हिंस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनी

0: ये सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4
1: एफएम। दिल को
0: करार आ जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4
1: एफएम।

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: कष्टी की कष्टी की।
1: चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली,

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप इन्हें सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कहिए ना।

0: ओ सवरिया ओए ओए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ।

0: बांधी थोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, हो गोरी हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
0: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय। मुझको बना गए बावरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया।

0: के चल दिए तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गए।

खोया मैं कैसे उसकी बातों में, कहता हूँ दम तो लेने दो। हाँ हाँ हाँ खोई वो कैसे मेरी बातों में, कहता हूँ दम तो लेने दो। हाँ हाँ हाँ क्या क्या कह डाला आँखों आँखों में, कहता हूँ दम तो लेने दो। हाँ

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

धीरे मैंने खींचा, आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा, आ हा हा। हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंदी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: ओए बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

0: एक दिल एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा।
1: हा हा छोड़ दो अचल, जमाना क्या कहेगा।
0: हा हा हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
1: जमाना क्या कहेगा,
0: दीवाना क्या कहेगा।

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना, अब ना ही कोई उम्मीद ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: दे।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।

रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।